0: यह मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्दरा।
1: नमस्ते।
2: पिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामान? அது பண்டிகை காலத்துல கோயிலுக்கு வெளியே வைப்பாங்க.
1: நஹி பேட்டா.
2: பேட்டா எங்க மாத்தறானுங்க, எல்லாம் மாச சம்பளம் தான். அதுவும் பொங்கலையும் புளியரையும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா.
0: ஓ கோன
2: யாரு? அவரா? அவரு
3: ஏ நல்லாரு நல்லாரு, நான் மடப்படி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன்.
2: வேணு சாஸ்திரி, வேணு சாஸ்திரி.
0: அச்சா வேணு சாஸ்திரி.
2: ஆமா ஆமா.
1: இஸ் பச்சி கா பர்த்டே ஹே, பண்டிட் சாஹியே, பூஜா கரானா ஹே, பூஜா
2: பூஜா கரானா ஹே. இருங்க சொல்றேன்.
1: வாழ்ந்துட்டு
2: கோயில் பேச.
1: इस बच्ची का जन्मदिन है तो मंदिर से बोला पूजा करवा ले.
3: अच्छा, आप हमारे टेंपल में आए हैं, बहुत खुश हुआ.
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं.
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं. अच्छा बेटी, तेरी जन्मदिन है. क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान.
3: मुस्कान, बहुत प्यारी नाम है. अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
4: स्टार इज पूसम.
3: ओ पूसम, वेरी गुड स्टार. शी विल बिकम अ वेरी बिग हीरोइन. तू तो आयशर राय बन जाएगी.
4: बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो शाचिना टेंपल है.
4: Who is the main god?
3: Lord Shiva.
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे. ए वहां क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल. चलिए आप चलिए.
2: எல்லா மொழியும் பேசுறா?
3: யார் இவாளா? இவங்க வடநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஏ மந்திர் கா பட பண்டிட ஹே, வேணு சாஸ்திரி ஜி.
0: வேணு சாஸ்திரி கா?
3: हां जी.
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है.
1: बेल बॉय?
3: हां जी.
1: ये तो बैड बॉय है.
5: இன்ன பத்தியா வாட் ஏதோ சொல்லி இருக்காங்க.
3: आइए पूजा करेंगे.
2: என்ன
5: உலகத்திலேயே ஒன்ன மாதிரி அயோக்கிய பைய கிடையாது.